0: जान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पांव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीबाब सीमाब हर एक जर्फ में ढल जाती है। तुझे जिस भी बर्तन में ढाल दो तो वैसे ही बन जाती है, तू पानी की तरह है या कह लो मरकरी की तरह है, जहां भी जिस तरीके से ढालो तू ढल जाती है। तो वो और क्या चीज है, तू अगर सोचेगी तो तू
1: हाँ,
0: लड़
1: तो
0: भी
1: जब
0: सकती है
1: कर लड़
0: ना
1: सकनी उठे भी लड़ लेंगे।
0: कह सकते हो तू कि बेजान खिलौनों से बहल जाती है, तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है, पांव जिस राह में रखती है फिसल जाती है, बन के सीमाब हर एक जर्फ में ढल जाती है। जिस्ट के आहानी सांचे में भी ढलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। ये जो जिंदगी का लोहे का सांचा है ना, उसमें भी तू तू ढल सकती है,
1: जी
0: तो चल मेरे साथ चलना है तुझे। जिंदगी जिंदगी जेहद में है, सब्र के काबू में नहीं। यानी जिंदगी लड़ने का नाम है, चुपचाप बैठने का नाम नहीं। जिंदगी जेहद में है, जब सब्र के काबू में नहीं, नब्ज है हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं,
1: वाह,
0: उड़ने खुले में है निखत खमे गेसू में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं,
1: हाँ
0: उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे।
1: ना,
0: गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कजा तेरे लिए। यानी इस तुझे दुनिया ने इस कदर मैनिपुलेट कर दिया है कि तू एक चिता में जलने को भी तैयार है। वो टाइम था ना कि चिता में भी जल जाते थे, अगर पति की मृत्यु हो गई तो बीवी भी उसके साथ चिता में जल जाती थी। इस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ था, तो उसमें बात की है उन्होंने। गोशे गोशे में सुलगती है चिता तेरे लिए, फर्ज का भेस बदलती है कजा तेरे लिए, कहर है तेरी हर एक नर्म अदा तेरे लिए, जहर ही जहर है दुनिया की हवा तेरे लिए। रुत बदल डाल अगर फूलना फूलना फलना है तुझे, रुत बदल डाल अगर फूलना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, मतलब इतिहास ने अभी तक तेरी जो कीमत है वो जानी ही नहीं, वो समझी ही नहीं है कि तू किस काबिल है ना, किस
1: जी
0: कितनी कैपेसिटी है तेरे अंदर।
1: जी
0: तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं, तेरे अंदर आग भी है अंगारे भी हैं बस आंसू नहीं है अकेले, सिर्फ तेरे अंदर आग भी है अंगारे भी हैं। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उनवाव बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून ओ अरस्तू है तू जहरा पर भी।
1: एकदम, मतलब उठन नहीं रही हो, है ना।
0: हाँ मतलब कितना
1: वाह भाई,
0: फोर्स कर रहा है
1: वाह
0: बेचारा,
1: भाई कहना
0: थोड़ा ही रहेगा बस
1: पड़ेगा
0: मतलब तू प्लूटो भी है एक ही पैराग्राफ रह
1: बेटा,
0: गया
1: सौखा नहीं थोड़ा
0: हाँ तो कितना पहले एक सोसाइटी को भी तो करना ना कि घर की औरतें, जब वो इतना इस तरीके का टाइम था कि ऊंची आवाज में बोलना भी अलाउ नहीं था, मतलब एक लेवल पे बैठना भी अलाउ नहीं था। मर्द अगर बैठा है, औरत जमीन पे बैठी है, कपड़े भी वो अपनी पसंद की नहीं पहन सकती है, मतलब अगर आदमी नहीं रहा तो सिर्फ व्हाइट कपड़े पहने, वो उस सोसाइटी की बात कर रहा है। तो इसीलिए उसको इतने फोर्सफुली वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं।
1: उठ दिया।
0: तो चलो खत्म ही कर देते हैं एंड में, उठ
1: नहीं नहीं
0: मेरी
1: नहीं
0: थोड़ा से
1: पता तो लगे, कभी कभी देखने की जान लगी है
0: मेरी भी लग रही है क्या यार आराम तो यार
1: जनानी ने तो
0: नहीं पर
1: कहते वांडे खड़ना सौखा नहीं होता, तो जंग ते
0: क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम ही ऐसा था ना उस टाइम के, अगर आप हिस्ट्री पढ़ो तो बड़ा सीरियस माहौल था। आज हम हंस रहे भले
1: ही लगेगा जिदा ना हौली हौली जी कपड़े कड़न दी हो आ
0: पैक पैक
1: पाला
0: कर रही है
1: पाला। अच्छा

0: सिर्फ एक ही इंसान कह सकता है माँ, वो है माँ। हम बड़े हो गए हैं पर दिल आज भी वही है जो दर्द में सबसे पहले माँ को ही ढूंढता है। थैंक यू जी। श्रद्धा भारद्वाज जी, श्रेया भारद्वाज जी की ये लिखत तो अमृत भैन जी ने साडे नाल सांझी कीती सी, ते धन्नवाद जी तुहाडा। ते बलजीत जी कहिंदे ने कि सत श्रीकाल, सोहणी गलबात जी, जिउंदे वास्ते रहो, सारिआं दा वीकेंड वधिया वधिया लंघे। सिमरन जी कहिंदे कि पता लगे वी अगों शुकर भा मैं आप कबड्डी दे टूनामेंट ते कहिंदे पिआ चक्की फिरदा कविता आप नहीं जरूर हो गए कोई भी चक्के गल ते सुणाउण दी आ। ते थैंक यू मैंडी जी, धन्नवाद तुहाडा। कहिंदे सत श्रीकाल, ते कहिंदे हैव अ गुड वीकेंड टू ऑल फैमिली। ते वीर जी, कैन यू प्लीज़ अनाउंस इफ एनी वन कैन टैल मी रिव्यू फॉर वेरबी सैकेंडरी कॉलेज या फिर त्रुगनीना वैमेन सैकेंडरी कॉलेज सीनियर कैंपस। माई डॉटर नीड टू हैव एडमिशन, रियली एप्रीशिएट, थैंक यू। हाँ जी, जो कोई आया तो मैसेज तो तुम आप जरूर दस देंगे जी। बाकी बेस्ट वे यही हों कि तुम उ जाके तो छुट्टी के टाइम खड़ो, जो आप आके भी कई बार गल कर चुके हैं, तो उस लिहाज के नाल वेखो भी उत्थे बच्चों का बिहेवियर किदा का, एक दूसरे ना कि विचरते, अपने जो गड्डिया च बहिंदे आ माँ प्यो दे नाल, ते उन्हां दे नाल किदां पेश होंदे आ। कुल मिला के बच्चों के चेहरे, उन्हां दा तैयार होना, उन्हां दे वालां दे स्टाइल तुहानूं उसे तो पता लग जूगा, तुसीं चूज़ कर लोगे भी हाँ एटलीस्ट एक तुहाडी टिक हो चुकी होगी। बाकी जिहड़े नतीजे आ उत्थे पढ़ाई पढ़ूई किदां दी आ, उह ते अंकड़े तुहानूं जिहड़े आ उह देखी पैंदी आ रेटिंग तुहानूं। थैंक यू अमृत जी कहिंदे कि थैंक यू आंटी जी ने बहुत सोहना सुनाया। संदीप दत्ता जी कहिंदे कि शोकर जी ने आत करा दी। तो जसवीर जी कहिंदे ने कि मेरे पिछले हफ्ते मेरा पुत्र 5 साल का पुत्र बीमार सी, तो मैं अपने GP क्लीनिक दे विच सी, तो उसने वोमिट कर दी, मेरी पानी की बोतल भी खत्म हो गई सी, तो फिर एक ओजी औरत ने मेरी मदद की, तो मैंने पानी लिया के दिता, तो मैंने पूछा कि मैंने होर कोई मदद की लड़ है, तो उस समय मेरे लिए बहुत वधिया मदद सी, मैं सिर्फ ये साझा करना चाहनी हाँ। थैंक यू थोड़ा तुम ये साझा किया, क्योंकि इदा दियाँ निक्किया निक्किया इन्हों आप निक्किया गिन लें कई बार, पर इदा दियाँ जिदा पिछली बार हरमन जी ने मेरे ख्याल साझी की भी जी मैकडोनल्ड की लाइन के छोटी जी एक उन्होंने सिर्फ वारी देने दे उत्ते उन्होंने बिल दे दिता। तो इदां दियां निक्कियां निक्कियां चीज़ां जिहड़ियां ने सानू जिथे बहुत सारा कुछ नफरती सानू सुनन नू मिल रहा, क्योंकि खबरां च साडी मजबूरी है, जो खबर च आया वो तुहानू दसना ही है, उही खबर है, पर आ जिहड़ियां चीज़ां ने ज़्यादा इंपोर्टेंट ने साडे लई एक दूसरे नाल सांझियां करनियां, सानू ये पता लगता कि नहीं इंसान किन्ने चंगे इंसानां दे विच आपां वसदे हां, उत्थे कोई चमड़ी दे रंग नहीं तय करते भी वो पिछे कि इंसान है, उत्थे कोई देश दी स्टैंप नहीं तय करती भी कोई कि इंसान है, कोई कद काठी नहीं तय करती भी कि इंसान है, उदा बाणा उदी बोली नहीं तय करती, कई बार उदा जिहड़ा तुहाडे नाल कीता छोटा जिहा तुहाडे नाल गेस्चर आ, चाहे वह बोले बिना ही तुहानूं दित्ती समाइल आ, चाहे तुहाडी छोटी जी मदद आ, ये सारियां चीज़ां तय कर दियां ने कि आपां किड्डे सोहणे समाज दे विच रह रहे हां, साडे आस पास किन्ने वधिया लोक ने। थैंक यू जसवीर जी, ते आस करदे हां कि हुण ठीक होऊगा बेटा, वाहिगुरू तंदुरुस्ती दवे। थैंक यू। ते जिहड़ी चंगियाई आ उह इसे तरहां दे नाल अगे अगे फैलदी है, उस बंदे ने चंगियाई कीती तुहाडे तक फैल गई, तुसीं हुण किन्नियां तक फैलाई आ। सो ये चीज़ जिथे आपां इक गलत सुन लैणे जस जी, उत्थे वो सारिआं दे बारे आपां सारी दिहाड़ी इदां लगदा रहिंदा उहनां नाल वेख के भी आह बंदा गलती होणा है ना, ते जिथे आपां कुछ चंगा सुनदे उत्थे सारा दिन वो सारे बंदिआं चों आपां चंगियाई पालदे रहिंदे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इह गल है। ईवन कल दी गल है पता नहीं परसों दी गल है, ते मैं मेरी बेटी नूं पिकअप करन जांदी आं स्कूल दी छुट्टी, तुहानूं पता है भीड़ बहुत हुंदी है ना, मैं अंदर तक उहदी क्लास तक लैण जांदी आं, ते असीं ना सारे बराबर बराबर चल रहे सी, ते मेरे अगे दो बच्चे चलदे पए सी, एकदम अपनी भैन नाल चलता पिया सी, ते उहदा हत्थ मेरे वजे एकदम बच्चे का, ते गलती नाल ही, ते उहनूं मैं क्या केयरफुल बाबा, मतलब है ना एवें जिवें, ते उहने ना इन्ना डीसेंट वे दे विच मैनू ना आई एम रियली सॉरी मिस, होप यू आर ऑल राइट, मतलब इन्ना काइंडली होके मैं सॉफ्टली गया, ते मैं मेरी फ्रेंड भी नाल चल रही सी, ते असीं दोनों ने कहा यार किन्ने सोहने संस्कार ने ना इहदे, किन्ना कित्थे कई बच्चे जाण के धक्का मार देंदे, बच्चा गिर भी जांदा है, बॉदर नहीं करते निकल जाते है ना, कई बार तो परपसली भी धक्का मार देंगे, तो उत्थे बच्चा सीगा, तो दो कदम तो उहदी मम्मी खड़ी सीगी, तो मेरी फ्रेंड ने उन्हें कहा कि यू हैव गिवन सच अ गुड गुड अपब्रिंगिंग, लव्ड इट, लाइक यू मेड आवर डे, तो वह कहती की होया है ना, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ

0: लाल जी नचन लग पे
1: इस दे विच ते ए दिखा ना बावरी बोले लोग बट ओ भी किते किते मिलदा लेकिन हुण जिहड़ी मैं गल कर रही हां केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश ए मतलब ये वाला जो गाना है ना पूरे राजस्थान में ट्रेडिशनली बड़ा चलता है कहीं भी जाओ आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ या छोटे छोटे या कहीं भी फोर्ट साइड चले जाओ ये गाना चलता रहता है ना और राजस्थानी कल्चर से जुड़ता है लेकिन इसकी असल कहानी है ढोला और मारू की इवन तुम राजस्थान जाओ ना तो राजस्थान से बहुत सारे रेस्टोरेंट बहुत सारी दुकान है ना भी है ढोला मारू है ना जिवें पंजाब दे विच अलग अलग ढाबिया दे ना होंदे कुछ ते इदां ढोला मारू तुहानूं बहुत पढ़न दे विच आएगा हुण तुसीं शायद रिलेट करोगे जे तुसीं जाओगे नोटिस नहीं कीता एक्चुअली
0: मैनूं ओह बड़ा वधिया लगदा जिहड़े ओह राजस्थान ओह ठीकरियां जिहां नाल वजाउंदे ना
1: पत्थर जिहड़े वजाउंदे
0: हां
1: करतल कहिंदे की कहिंदे हां
0: ट्रेन च वी चढ़दे हुंदे
1: हां बिल्कुल एक्चुअली ये कहानी है ढोला और मारू की ढोला और मारू मारू के राजकुमार का नाम था ढोला और पुगल की जो राजकुमारी थी मारू उनका उनका विवाह बचपन में ही हो गया था लेकिन पहला होता था ना कि शादियां बचपन में हो जाती थी फिर एक उम्र के बाद गौना करके लेके जाते थे
0: मतलब
1: हाँ जी हाँ एग्जैक्टली तो बहुत टाइम हो गया दोनों उस बीच जो नरवर के राजा थे यानी ढोला के पिता थे ना उनका देहांत हो गया और जो ढोला की माँ थी उन्हें मारू कभी पसंद नहीं थी है ना तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में उस रिश्ते को तोड़ने का मतलब डिसाइड कर लिया कि अब इनकी मैं मतलब पिताजी तो रहे नहीं राजा ने रहे नहीं अब मैं इसकी कहीं और शादी कराऊंगी और उन्होंने बिल्कुल कोशिश की क्योंकि बचपन में शादी हुई थी तो भुला दे वो कहीं भी कुछ अगर चिट्ठियां भी आती वहां के मारू के घर से कोई संदेश भी आता कोई मिठाई भी आती कुछ भी वो छुपा देती थी हमेशा ऐसे कर करके ढोला भी भूल गए मारू को क्योंकि बहुत बचपन में उनकी शादी हुई थी और फिर एक टाइम के बाद ढोला का विवाह भी कहीं और कर दिया लेकिन जो मारू थी ना उसका प्यार सच्चा था वो उसका हमेशा वेट करती रहती थी इंतजार करती रहती अब आएंगे ढोला के परिवार के लोग अब उसने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी बहुत सारे खत भेजे बहुत सारे संदेश भेजे लोगों को भेजा लेकिन जो ढोला की माँ थी और उनकी बीवी थी वो जो भी संदेश या जो कुछ भी आता था
0: पहुंचाती नहीं है
1: पहुंचाती नहीं थी जला देती थी और छुपा देती थी तो लेकिन जो पुगल के लोग थे और मारू थे उनका जो मन था कि नहीं उनको उम्मीद थी कि कभी तो वो आएगा मेरे घर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ तो करें हम कि जिससे मतलब उसकी वो मेमोरी याद आए और वो उसे याद आए कि इन दोनों की शादी हुई थी और इनका प्यार था तो मारू ने और पुगल के लोगों ने मिलके एक ढोली लिया है ना ढोल बजाने वाला और उस ढोली को उनके महल के जस्ट सामने खड़ा कर दिया और ढोल बजा बजा के वो गाना गाने लगा है ना गाना यही गा रहा था कि मारू की आवाज दिल की आवाज गा रहा था कि पधारो मारे देश केसरिया बालम मतलब जिम ये दस रही है ना कि मैं बावरी हो गई तेरी याद में बड़ा वो पूरा गाना उसमें यही इनकी याद की पूरी जो बचपन से छोटी छोटी यादें उस गाने में भर के मतलब वो ढोली ने सुनाई फिर एकदम से वो सुनते सुनते फिर वो ढोला भी आया और उसको याद आया कि हाँ कि ऐसी कोई कहानी थी फिर वो जाके उससे मिला मतलब ये राजस्थान की उन कहानियों में से एक कहानी है कि जिनकी प्रेम कहानी पूरी हुई क्योंकि अक्सर हम प्रेम कहानियां देखते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होती हमेशा अधूरी रह जाती है तो आज भी राजस्थान में कई बड़े बुजुर्ग अगर दुआ भी देते हैं ना नए नवविवाहित जोड़ों को तो यही बोलते हैं तुम्हारी सदा सुखी रहो तुम्हारा प्यार ढोला मारू जैसा अमर रहे
0: अच्छा।
1: तो ये कहानी जुड़ती है
0: हैप्पी एंडिंग वाली
1: ओके। पधारो मारे देश अगर आप गाना सुनो तो ये ढोला मारू की कहानी से जुड़ता है
0: वैसे भी कहते हैं जो चलो हूँ तो समा बदल गया पहलियां दे विच जिहड़े बचपन च विआह हुंदे सी ते उहदे च कई वारी उह कहानी टाइप लगदा पर कहिंदे ने कि जदों तुहानूं बचपन दे विच इक सेध मिल जांदी ना तुहाडे मन नूं इक इक इक पिक्चर मिल जांदी इक अक्ष इक नाम मिल जांदा वा भी फलाने थां तुहाडियां तारां जुड़ियां ने जदों तुसीं वड्डे होणा उस घर जाणा उहदे नाल तुहाडा विआह होणा ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ क्योंकि पहले के टाइम में तो इतने ऑप्शंस भी नहीं थे ना, इमोशंस ही थे जो एक दूसरे की फीलिंग एक दूसरे तक पहुंचाते थे
0: जी। इमोशन ही है तो बाकी तो मन के जो कोई चंगा है तो वह परत के तेजे
1: आएगा
0: अपने आप ही तेजे तक आए ना। जसप्रीत जी कहते हैं कि कल मेरे नाल वधिया होया, माफी चाहते जो कॉलर आप नहीं लै पावे हूँ, आप मैसेज पढ़ के समाप्ति करते हैं। कहते कल मेरे नाल चंगा होया, एक कुड़ी मेरे को ऑर्डर लैन आई तो वो नाल आंटी भी सी, तो मन्नत ने उन्होंने नाल बहुत गल्लां कीतियां, तो वो कहिंदे कि किते ये वो मन्नत फतेह तो नहीं जिहड़े रेडियो हाँ जी ते गल करदे आ, ते बहुत सोहना बोलदे आ पंजाबी विच रोज़ रेडियो हाँ जी मैं सुनदी हाँ। थैंक यू जी, बहुत वधिया, थैंक यू, ये तो सानू भी बहुत वधिया लगा। तो सुखविंदर भैन जी की कहिंदे ने ओके कल मेरे नाल कहिंदे, अच्छा नहीं तो इन्हां दे सुखविंदर भैन जी क्या कहते हैं, अच्छा कहिंदे कि सब तो पहला तू मेरी धड़कन नू महसूस किया, सब तो पहला तू मेरी धड़कन नू महसूस किया, मेरे रब रूप नू बिना देखे मैनू प्यार किया, आप दर्द सह के मैनू भी जिंदगी दिती, आप रातां नू जाग के मैनू चैन नाल समाया, मेरे बोलन तो पहला ही मेरी गल नू समझिया, तू मेरा पहला रब ए मां। धन्यवाद जी तुहाडा। ते जसवाल साहब कहिंदे कि भाजी यश जी नू पुछो कि कवाड़ प्रेम दी की कहानियां, आइसक्रीम दियां रेहड़ियां दे उत्ते लिखिया हुंदा वा मेरे करण अर्जुन भी आएंगे नाले ठाकुर तू तो गयो अगली बारी दसांगे तुहानू। थैंक यू भाजी। कहिंदे कि एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ जैसमीन जी आले शो दा पॉडकास्ट पा दिओ, हाँ जी, जां पै चुका होगा जां पै जूगा जी, तो सारा कुछ जिहड़ा वा एक सीकुएंस दे विच एक लाइनअप हो जाता वा, उस तो बाद फिर जिदा जिदा जिदी जिदी वारी आउंदी आ वो पई जांदा वा, थोड़ा जा वेट कर लो। थैंक यू। कहिंदे माई आई वॉन्ट टू सेंड दैट टू माई फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, तो हिज बिग टाइम बटालवी फैन वॉन्ट लिसन टू डैट, पर बटालवी जी वाला जो प्रोग्राम है वो आई एम नॉट श्योर जैसमीन जी ने किया कि किया, वो तो अपना प्रीतम रूपाल जी ने किया वा, हो सकता उन्होंने वक्रे तौर पर किया हो, थोड़ा जहा क्लीयर कर लियो पहला तो कि चाहिए वा तुम मतलब बर्थडे विश भी करनी तो मतलब शो थैंक यू। कहिंदा गला खराब सी ते डॉक्टर कहिंदा गरारे नाल ठीक हो जांदा, ते दो दिन तो पाई फिरदा कोई फर्क नहीं पिया, दो दिन तो पाई फिरदा कोई फर्क नहीं पिया, आए हाय मेरा लाल गरारा। अच्छा थैंक यू। कहिंदे कबीर जी समवन ऑफर्ड मी ए प्लेस फॉर पार्किंग फॉर ए पार्क कार टूडे मॉर्निंग, ते शी इज़ फ्रॉम डिफरेंट कम्यूनिटी, ते हर सन इज इन असीस क्लास, ते रियली एप्रीशिएट हर काइंड गेस्चर। धन्यवाद। जदों इनकी निकिया चीज़ा आप वेखनिया शुरू कर देंगे, ये साढ़े लिए भी एक विन है, साढ़े लिए एक खुशी वाली गल है कि तुम हौली हौली इदा के मैसेज इदा दल्ला करनिया शुरू की, जो कुछ आप सोच रहे स पर मैं पिछले प्रोग्राम तक मैं लग रहा है कि नहीं यार है ही नहीं तेरे को कुछ इदा है ना, तो दस्या करो तुम भावें निकी तो निकी भी चीज़ होदा का आप एक दूसरे नाल शेयर करना शुरू करिए। आप थैंक यू तुहाडा, तो हैप्पी फ्राइड, बहुत मेहरबानी जी। कौन भेजते हैं मैसेज भेजते हैं जैसपाल जी, तो हूँ लें भाई तेरे को आप इजाजत, हंसते खेडते चढ़ती कला के रहो, तो सुनते रहो रेडियो हाँ जी 1674 AM। वीकेंड तुहाडा वधिया वधिया रहे, तो इस वीकेंड के उत्ते बार अंदर जाके जिहड़े तुसीं होर रंग नज़ारे तुसीं मानने ने उन्हां दे विच तुसीं आर्ट गैलरी च भी जा सकते हो परिवार के नाल, सो उत्थे भी कुछ ना कुछ तो चलता रहिंदा, नैशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया दे विच कुछ प्रदर्शनियां चल रही ने, सो तुसीं परिवार के नाल जाके तो इत्थे भी घूमी घूमी तुसीं कर सकते हो, वधिया मौसम का आनंद तुसीं माण सकते हो, तो चढ़दी कला दे विच रहो, मिलदे आपां, रब राखा मंडे, हाँ जी रब राखा।

0: KRA ने साल दी सब तो इंतजार की थी गई संगीतमय शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सत्येंद्र सरताज सतारा मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवर अरेना विच स्पॉन्सरशिप दी इन्फॉर्मेशन लिए कॉल करो 04268094999 फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au
1: टेंशन मेरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
2: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 04105030503
1: या 9077993
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077973
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल
3: JBCO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
4: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालतां च
5: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
6: मैं उत्थों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा
3: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
5: Hun vekhna na bhulyo. 15 Mai ton tuhade nedle cinema gharan vich. Shera. Aa kithe vajj gayi teri gaddi?
7: Gaddi ta theek ho ju. Par insurance walyan nu, legal walyan nu itthe pardes vich samjhaunga kive?
5: Tere vaang kinne hi apne bhain bhraavan di tension mintan ch dur kiti hai. Sink Smash Repair walyan ne inna de kol apni maa boli ch kam karan wale lawyers di free of cost team. All major and minor accidental lifetime warranty naal. Work and paint. Free loan car di service mildi hai. All private and insurance ਰਾਈਸ ਕਾ ਮਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383857748 ਤੇ ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ ਰੇਵਨ ਹਾਲ

0: अरे जी, क्या तू साला लक पाए हो यार।
1: एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है
0: और ये तीसरी
1: दोस्त ही है ना।
2: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
3: किचन द स्टाइल डल लग दा, बाथरूम वेनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाटे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वेनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।
4: ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया भेजना, इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया मंगवाना,
3: डॉक्यूमेंट्स बैगेज या बिजनेस कुरियर, बस एक ही नाम शिप ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया। 15 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मेलबर्न तो बाद हुन सिडनी हैरिस पार्क विच भी। स्पेशल ऑफर विच पाओ 3 किलो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया सिर्फ $295 विच, 22 किलो इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया सिर्फ $310। डिलीवरी सिद्धी कर दे एड्रेस तक। हुने डायल करो 0406-966-668 और विजिट shipglobal.au।
5: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
6: सूरज देवता
5: की मतलब?
6: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्ना दी सेविंग्स वध गई।
5: मैनू नहीं पता, आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
6: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
3: सोना चाहिदा,
7: भरोसा चाहिदा,
3: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।

0: 0493-536-042. Ready, set, go! Chadston Ford. Dandenong Road de Tuhano udik rhe hai. Ford Ranger. Ranger Super Duty. Everest de Sadabahar Mustang. Brand new demo de quality pre-owned vehicles. Trade-in ate finance options we available. Aho te apni navi Ford da test drive karo. Business plate lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Kori naal. Radio Hanji de hawale naal pao. 10 saal de free service. Chadston Ford. Ready, set, Ford.
1: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
2: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
3: From the makers of Rocky और रानी की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
4: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
5: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले, याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने, तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप, टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड, कॉल 0390-866-55 और विजिट tyreforce.com.au।
6: रेडियो हांजी 1674 आस करते हैं दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा, चढ़ती कला दे विच होगे। समा हो चुका अज दी कहानी दा, गामा अपने दरां दे विच खड़ा, उधरों ताई लंगड़े वाह तुरी आउंदी, लंघदी नूं टीचरां करदा, ताई की गल, बड़ी इको टायर ते दौड़ लाई जानी है, पर ताई अज उस मूड दे विच नहीं है। कहन लगी वे बड़ा औखा तुरिया जांदा है, रब कहे दे किसे दे गोडे ना खराब करे, ये जदों गोडे खराब हुंदे ने ना ते सारी दुनिया बेरसी जी लगन लग पैंदी है, अपना ही शरीर अपने आप ते भारू लगन लग पैंदा, अपने शरीर दे नाल नफरत हो जांदी है, पता नहीं किदां किदां दे विचार आउंदे ने। गम ने भाप लिया कि ताई अज चंगे मूड दे विच नहीं लगती, ते ताई सौदा लैण दे लई निम्मे नूं भेज दिंदी, ताई दा अगों कोई जवाब नहीं आया। गम ने अगे गल वधाउणी बहुत ही जरूरी भी ना समझी, की एवें किसे दा घर फोलना, ताई आप ही बोल पी वी अज दर्द ज़्यादा होंदी सी, मैं सोचा मैं आप ही दवाई लै आनी हाँ, बस आ दवाई लैन गई सी, एक दो चीज़ा होर लैन वालियां सी, मैं सोचा आई तो हैगी हाँ ये भी लै चलती हाँ, बाकी निम्मे होना को कित्थे टाइम, उन्हां को होर बथेरे काम ने करन वाले, इन्ना कह के मन जिहा भरिया ते अपने घर वाल नूं हो तुरी। ताई गवांढ दे विच ही रहिंदी ही तां करके हले बाहर ही खड़े गामे दियां उधरले पासे नूं कन्न कसे गए ते आवाजां सुणनियां शुरू हो चुकी। घर वड़दी ताई ने आवाज दित्ती, ये की कर रहे हो वे निम्मे, मेरा समान क्यों कढ के बाहर रखी जांदे हो। निम्मा तां बोलिया नहीं, वोटी कहण लगी बीजी तुहाडा कमरा वेला कर रहे हां, मेरी भैन ने आना वा, उन्हें पढ़न दे लई आना, इत्थे साढ़े कोल ही रहूगी, मैं सोचा तुहाडे कमरे दे विच रख लैने आ, ते मैं कित्थे जाऊंगी नहीं, तुसी उपर वाले कमरे दे विच पै लिओ ना, तुहानू पता नहीं लग

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
2: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
1: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535 पंताली ते।
3: क्रिएटिव इवेंट्स लेके आ रहे ने साल दी सब तो इंतजार कीती गई संगीतमय शाम हेरिटेज टूर 2026 डॉक्टर सतेंद्र सरताज।
4: ओ लावा इश्क दे अंबरी उड़ारिया मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमारिया।
3: 17 मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवो अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इंफॉर्मेशन लिए कॉल करो 0426-809-499। टिकट विजिट tiktek.com.au।
5: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
6: की होया
5: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
6: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो बीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-93-33
6: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733
6: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
5: हर कदम तुहाडे नाल।

0: Brokers. अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: हाँ जी रेडियो
2: CO Films लेके आए ने एक्शन इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट पंजाबी फीचर फिल्म शेरा
3: 5 साल बाद मुड़िया शेरे ते मुड़िया भी केड़े हालात च
4: स्टारिंग परमीश वर्मा सोनल चौहान योगराज सिंह मानव विज अते होर भी उगे कलाकार
5: मैं ओथों भी मुड़ के जत्थों कोई नहीं मुड़ के
2: Written and directed by Savio Sandhu. Produced by Anmol Sahni.
4: Hun vekhna na bhullyo. 15 Mai ton tuhade nedle cinema gharan vich.
6: Ta kithe vajj gayi teri gaddi?
7: Gaddi ta theek ho ju. Par insurance walyan nu legal walyan nu itthe pardesh vich samjhaunga kive?
6: Tere vaang kinne hi apne bhen bhraavan di tension mintan ch dur kiti hai.
8: Sink Smash Repair walyan ne
6: inna de kol apni maa boli ch kam karan wale lawyers di free of cost team. All major and minor accidental lifetime warranty naal. Work and paint. Free loan car di service mildi hai. All private and insurance auto ਰਾਈਸ ਕਾ ਮਤੇ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383587748 ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ ਰੇਵਨ ਹਾਲ
9: ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਕੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਕ ਪਾਏ ਹੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੇ ਸਾਥ ਪਕੜੇ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੋਸਤ ਛੁਡਾਨੇ ਚਲੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ
10: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
11: की हो यहाँ इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
12: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया
11: आज सिम्मी पहन जी आई सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
12: अच्छा असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
11: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au
13: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील, स्किल्स असेसमेंट दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, radio हां जी रे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
3: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
4: सोना चाहिदा,
5: भरोसा चाहिदा,
4: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
6: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
7: तू तो यार हुणे नहीं चाहिए,
8: मैं तो कहना है एतवार भी स्कूल लगन, मसला दा मौका मिलदा रीलां तो बचन दा।
9: अरे बोलो पप्पू दे पापा।
6: इस 8 मई नूं सिनेमा विच रिलीज होण जा रही है नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक, वेखण जरूर आयो।
10: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उहनां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थोनू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: प्रीत की होया?
1: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: जे तुसी भी इना देवांग थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, TR, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 045-151-1100, 045-151-1100। Desire Migration।
2: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
3: लेजेंडरी लव स्टोरीज की ही तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
4: From the makers of Rocky और Rani की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
5: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
0: Kitchen the style dull lagda, bathroom vanity simple jya. Hun tension khatam karo, aa gaya ZJ Stone Mason. Paade karnu banaye ekdam classy. Assi banaune aa designer stone bench tops for kitchen. Stylish vanity ate modern laundry, oh vi porcelain ate marble nal, jithe elegance mildi hai durability nal. Hun na sirf kar par tuhadi personality vi shine karegi stone de style nal. Call karo 0410-045-555 ya aaj hi visit karo 104 Collins Road, Melton.
6: Je tusi bimar ho ta AI kol nahi, doctor kol janne ho. Fir kanuni masle vich faisla khud kyun? Yaad rakho, delay in law is damage in life. फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au.
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उडीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 3 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford। मेलबर्न दे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स लई खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन लई आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई करदे ने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
6: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
7: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
6: आज सिमी पहन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
7: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
8: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुन धमाल। नीरू बाजवा अते निर्मल ऋषि जी दी मूवी जवाक वेखण जरूर आयो।
9: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पंजाबी फीचर फिल्म शेरा,
10: 5 साल बाद मुड़िया शेरे,
11: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
12: मैं उत्थों भी मुड़ के हूँ जत्थों कोई नहीं मुड़ के होगा।
9: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni।
11: उन वेखना ना भूलियो 15 मई तो तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
13: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
14: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
13: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है। ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383-85-7748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
15: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਬੈਗੇਜ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰੀਅਰ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਸ਼ਿਪ ਗਲੋਬਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਿਡਨੀ ਹੈਰਿਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ 3 ਕਿਲੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ $295 ਵਿੱਚ, 22 ਕਿਲੋ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਰਫ $310, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿੱਧੀ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੱਕ। ਹੁਣੇ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 0406-966-668 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ shipglobal.au।
16: ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਲੱਕ ਪਾਏ ਹੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੇ ਸਾਥ ਪਕੜੇ ਗਏ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੋਸਤ ਛੁਡਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ।
17: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
18: तुसी सुन रहे हो इस प्रोग्राम दा रिपीट ब्रॉडकास्ट।

0: प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
2: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है। From the makers of Rocky और रानी की प्रेम कहानी, Dharma Productions presents Chand Mera Dil. Watch Ananya Pandey and Lakshya in Chand Mera Dil, coming to cinemas on May 22nd.
3: Chand Mera Dil, Chand Mera Dil.
4: Creative events, leke aa rahe ne saal di sab to intezaar ki ti gayi sangeetmayi sham. Heritage Tour 2026, Dr. Satinder Sartaaj.
5: Hola mai ishq ke
4: मई 2026 शाम 6 बजे मेलबर्न दी शान रोड लेवो अरेना विच। स्पॉन्सरशिप दी इन्फॉर्मेशन लिए कॉल करो 04268094999। फॉर टिकट्स विजिट tiktek.com.au।
6: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने, बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058600 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: पेंजी की हाल है पिट दर्द दा?
0: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया, सब कुछ ठीक है। थैंक यू एदे बारे दसन लई।
2: और सुनो, हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने। स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है। मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदन लई कॉन्टैक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स। वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड। सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433465492।
0: प्रीत की होया?
1: ओ इस बार फिर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फिर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
0: इना दिवांग थक चुके हो ता हुणे कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वाले नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, टीआर, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0441511100, 0451511100। डिजायर माइग्रेशन। की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
3: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बणया।
0: अज सिमी भैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
3: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au। की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट, पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
4: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
5: हां जी रे।

0: beauty. Everest is Sadabahar Mustang. Brand new demo, the quality pre-owned vehicles. Trade-in ate finance options be available. Aao te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Kori naal. Radio Hanji de hawale naal pao. 3 saal di free service. Chetston Ford. Ready, set, Ford. Orbit Homes apne iradiyan vaang sirf imarat nahi balki apne har ek grahak layi banaunde ne unna de supneyan da ek majboot kar. House and Land Experts Orbit Homes apne 44 variyan te tajurbe naal thonu dinde ne 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock. Aaj hi pahuncho Orbit Homes Display Centers ya call karo Harpan Chauhan nu 0433-280-252 te 0433-280-252 ते
1: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
2: यार की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं पड़या
1: आज सिम्मी पहन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता
2: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता
1: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au
3: roz roz shopping ga hundiyan ne pata nahi kehda devta razi kita inna ne
4: suraj devta
3: ki matlab
4: oh kamliye sun current walyan ton jadda inna ne solar panel lagwaya ta inna di savings vadh gayi
3: mainu nahi pata aapa vi solar panel lagwana hai hune
4: tusi vi karo bachat te lagwao solar panel call sun current 0448-066-494 te saalan ton best service layi ek hi naam sun current deo radio hanji da वाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
0: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल टी बार्स इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ 0423-102-900 ਈਮੇਲ sales@ozlintels.au

0: RCO Films leke aaye action, emotion ate full on entertainment. Punjabi feature film Shera.
1: 5 saal baad mudiya Shera. Te mudiya vi kede haath ta
2: ji. Starring Parmesh Verma, Sonal Chauhan, Yogra Singh, Manav Vij ate hor vi ugge kalakar.
3: Main utthon vi mud ke jithon koi nahi mud ke aunga.
0: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
2: Hun vekhna na bhulyo 15 mai ton tuhade nedle cinema ghara vich
4: yaar tu itthe inni cheti aake pakka vi ho gaya ki jugad laya hai
5: jugad nahi eh hai 8 saalan ton vi vadda tajurba Bansal immigration da jinhan ne vadhiya course vich admission karai ate fir mainu PR di raah vi vikhai inna hi nahi e student visa AAT appeals skilled visas PR US visitor visa ate hor vi kai migration services provide karde ne
4: number ta de Bansal immigration wale
5: हाँ जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
6: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना
7: देखिए प्रजापति पांडे उनकी श्रीमती एंड अदर्स इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में
8: किचन द स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
9: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
10: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
9: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
11: टेंशन मेरी टेंशन
12: की होया
11: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
12: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पोंसर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
11: या 90-77-97-33
12: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
11: याद रखो 9077-9733
12: Viva Immigration and Education Consultant
11: हर कदम तुहाडे नाल
13: ता किथे वज गई तेरी गड्डी
5: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवें
13: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंह स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
8: सोना चाहिदा
11: भरोसा चाहिदा
8: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493-53

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: जवाका दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
2: ਨੀਰੂ
1: ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਵਾਕ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ।

0: जवाकां दी एक्टिंग है कमाल, पवेगा हुण धमाल।
1: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
2: सूरज देवता
1: की मतलब?
2: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तों जदा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया तां इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
1: मैनूं नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाउणा है हुणे।
2: तुसीं भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-06-8-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस ले एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
3: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उनां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
4: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
7: प्रीत, की होया?
8: ओ इस बार फेर पीटी च बैंड नहीं आए, हुन फेर कोई वीजा नहीं पैना, लगदा इंडिया वापस जाना पैना।
3: जे तुसी भी इना देवांग थक चुके हो ता हुने कांटेक्ट करो ऑस्ट्रेलिया विच परोसे अते तजुर्बे वाले डिजायर माइग्रेशन वालेयां नु। इना कोल है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी, स्टूडेंट वीजा, टीआर, पेरेंट्स वीजा अते बाकी सारिया इमिग्रेशन तो रिलेटेड सर्विसेज। नंबर लिखो 0441-1100 0451-1100। Desire migration, sona chahida,
9: bharosa chahida,
3: quality te buyback vi chahida, chale aao Delhi Jewelers, Stockland Point Cook vikhe, jithe buy carat gold, classy silver, dazzling diamonds ate gemstones, custom jewelry thode order te ready, purana sona buyback and exchange turant, cash chahida, gold loan easy and safe, repair, bullion buying, selling sab ek hi jagah te oh vi wajib rate te, Delhi Jewelers 310/2 Main Street Point Cook, call 0493-536-042।
10: ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
11: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂ ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
10: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383-85-7048 ਤੇ। ਸਿੰਕ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।
12: हमारी लव स्टोरी तो लेजेंडरी बन गई।
13: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रेजिक होती है।
14: फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स चांद मेरा दिल। वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल, कमिंग टू सिनेमाज ऑन May 22nd।
15: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: directly listed. Search us online or call 0433465492.
1: Ki chahida? Australia da visa lona? Ja visa layi mashwara chahida? Mil juga. Sidde aao Garewal Visa Solutions. Australia vich har tarah diyan visa loda layi ik parose yogna. Jo study visa, skilled visa, employer sponsored visa, dama, parent, partner te visitor visa vich deal karde ne. Hune call karo Pritinder Garewal nu 0490054596. GarewalVisaSolutions.com.au te jao. Aao, thoda koi hal kariye.
2: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ
3: ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ
2: ਜੀ
3: ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਔਰਤ ਕੈਫੀ ਆਜ਼ਮੀ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਬ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਬ ਇਹ ਰੂਲ ਹੀ ਥਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਾ ਸਿਰਫ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਘਰ ਮੇਂ ਬੈਠੇ रसोई संभाले बच्चों की देखभाल करे घर की देखभाल करे और जो आदमी है वो बाहर जाए पैसा कमाए संघर्ष करे ये उस टाइम पे लिखी हुई नज़्म है उठ मेरी जान है ना अब आप सोचोगे कि ये एक रोमांटिक या कोई औरत की तारीफ वाली नज़्म है या उसकी सजावटी गुड़िया टाइप लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें एक्चुअली हकीकत मतलब प्रैक्टिकल नज़्म कह सकते हो कि उस जमाने में जब एक मतलब औरत को कहा जाता था कि ये सिर्फ सजावटी गुड़िया है उस टाइम पे जो कैफी आजमी थे उन्होंने कहा कि नहीं ये आम शख्सियत है इसका मतलब ये सेम ही है जैसे हम हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के आसपास लिखी हुई ये नज़्म थी वो ऐसा दौर था रंजोत जी जब बहुत सीरियस टाइम चल रहा था है ना वॉर का टाइम था सब तरफ लड़ाई झगड़े है ना स्ट्रेस बहुत था तो हर एक कवि हर एक पोएट हर एक शायर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी लिखत लिख रहा था कि उस टाइम पे अगर हम रोमांस की बात करें हम प्यार की बात करें मोहब्बत की या एक औरत की बात करें तो बेईमानी होगी तो इसलिए उस टाइम पे हर एक कोई काफ़ी सीरियस शायरियाँ भी पोइट्स उस तरीके की लिख रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि चल रही थी इसलिए जो फैज़ है उन्होंने भी एक आपने सुना होगा ये लाइन मुझसे पहली सी मोहब्बत ना मेरे महबूब ना मांग क्योंकि उस टाइम ऐसा टाइम था ना कि अब मैं वैसा नहीं हो सकता तो क्या ये फैज़ ने ये लिखी थी लेकिन उस टाइम पे कैफी आजमी का नज़रिया अलग ही था वो औरत को कोई छोटा नहीं समझते थे और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं समझते थे कि मैं एक नज्म लिख दूंगा तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे वॉर में नहीं जाओगे या लड़ोगे नहीं
2: जी।
3: वो बल्कि औरत को कमजोरी नहीं ताकत मानते थे तो उसी पर उन्हें लिखा था सुनिएगा इस नज्म में और बेसिकली एक 21 साल की लड़की के लिए लिखा था और उस टाइम पे जितनी भी औरतें थी ना तो सबकी एक मतलब एक मेंटेलिटी चेंज हो गई थी जैसे हम चाइल्ड केयर की भी बात कर रहे थे ना कि वर्ल्ड वॉर के उस टाइम पे यह था कि औरतों को भी बाहर निकाला था कि तुम भी जाओ काम पे तो उस वो भी एक फपती है ये चीज इस पे
2: जी।
3: तो ये कुछ ऐसे है उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे कल भी माहौल में लर्जा शर्रे जंग है आज यानी वक्त के सीने में जंग की चिंगारियां चल रही हैं ठीक है हौसले वक्त के और जिस्ट के यक रंग है आज जिंदगी यानी जिंदगी और वक्त दोनों के हौसले एक जैसे हैं आप गीनों में तपन वलवलाए संग है आज यानी काश के प्यालों में पत्थरों की उम्मीदें धड़क रही हैं क्योंकि टाइम इस तरीके का है कि हर एक को एक उम्मीद है कि कुछ तो अच्छा हो जाए हुस्न और इश्क हम आवाज हो हम अंग है आज यानी आज हुस्न और इश्क एक दूसरे से ही आवाज मिला रहे हैं जिसमें जलता हूँ उसी आग में जलना है तुझे आज उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे जंग में जाना है ना पर मैं तुझे छोड़ के क्यों जाऊँ तू भी उठ तू भी मेरे साथ चल दोनों साथ में जंग लड़ते हैं तू क्यों भला घर में बैठ के मेरा इंतजार करे और मैं जंग लड़ूं आज चल अपन दोनों साथ में चलते हैं दोनों साथ में जंग लड़ते हैं तू की बेजान खिलौनों से बहल जाती है तपती सांसों की हरारत से पिघल जाती है पांव जिस राह में रखती है फिसल जाती है बन के सीबाब सीमाब हर एक जर्फ में ढल जाती है तुझे जिस भी बर्तन में ढाल दो तो वैसी ही बन जाती है तू पानी की तरह है या कह लो मरकरी की तरह है जहां भी जिस तरीके से ढालो तू ढल जाती है तो वो और क्या चीज है तू अगर सोचेगी तो तू लड़ भी सकती है
2: कर लड़ सकती उत्थे भी लड़ लेंगे

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुण टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
3: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड, डेंडेनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
4: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
5: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा, न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
4: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो, विजिट goldleafdairy.com।
6: JBCO Films लेके आए ने एक्शन, इमोशन अते फुल ऑन एंटरटेनमेंट, पंजाबी फीचर फिल्म शेरा।
7: 5 साल बाद मुड़िया शेरे, ते मुड़िया भी केड़े हालात च।
8: स्टारिंग परमीश वर्मा, सोनल चौहान, योगराज सिंह, मानव विज अते होर भी उगे कलाकार।
9: मैं उत्थों भी मुड़ के जित्थों कोई नहीं मुड़ के।
6: Written and directed by Savio Sandhu, produced by Anmol Sahni.
8: Hun vekhna na bhullyo 15 Mai ton tuhade nedle cinema gharan vich.
10: Tension nidi tension.
11: Ki hoya?
10: Athe immigration de inne pange ne yaar, mukde hi nahi.
11: Kaka ji, tension chaddo, phone chakko, call karo VY Immigration nu, jithe immigration expert Harpal Singh Bajwa, employer sponsor, partner ya parents ya visa, skilled migration, student visa, MRT ya RRT appeals te skills assessments de mahir baithe ne. Hune hi appointment li call karo 0410-530-530
10: या 90-77-97-33
11: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
10: याद रखो 9077-9733।
11: VY Immigration and Education Consultant,
10: हर कदम तुहाडे नाल।
12: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत कर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस guarantee with an industry leading 24 month price lock. Aaj hi pahuncho Orbit Homes Display Centers ya call karo Harpan Chauhan nu 0433-280-252 te, 0433-280-252 te.
13: Chaldi da naam gaddi, aa te sunya hi hona ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-55 और विजिट tyreforce.com.au।
14: बलजीत, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਵੇਖਣ ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਚਲੀਏ
0: ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਵਾਲਾ ਸਟੋਰ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ।
14: ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਗੋਲਡ, ਡਾਇਮੰਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਜੁਐਲਰੀ ਵੀ। ਤੁੰਨਾ ਜੁਐਲਰਸ, 99 ਮੇਨ ਰੋਡ ਵੈਸਟ, ਸੈਂਟ ਐਲਬਨਸ ਅਤੇ 341 ਲੌਨਸਡੇਲ ਸਟਰੀਟ, ਡੈਂਡੀਨੋਂਗ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋ ਕਾਲ 0499-2535-45 ਤੇ।
15: ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈ ਕਮਾਲ, ਪਵੇਗਾ ਹੁਣ ਧਮਾਲ।
16: ਨੀਰੂ
17: ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵੀ ਜਵਾਕ, ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ।
16: गणेश जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
17: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
18: सोना चाहिदा,
19: परोसा चाहिदा,
18: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल

0: चंगा चीज हुई
1: जी।
0: एक तो मैं अपने फोबिया, तो मेनू ब्लड देने का फोबिया है कि मेरा वेन बहुत थिन है तो नीडल फिट नहीं आता मेरे वेन में, एंड दो तीन दफा ट्राई करने का वो दे गिव अप। तो इस बार उन लोग ने ट्राई किया एंड इट केम आउट इंस्टेंटली एंड सो आई केम ओवर दैट फोबिया।
2: गुड।
0: दूजा और दूजा था मेरा लेफ्ट आर्म में हमेशा दर्द होता था इंजरी के बाद
2: जी,
0: एंड आफ्टर गिविंग दैट ब्लड वो पेन रुक गया
2: ऑटोमेटिकली।
0: आई डोंट नो हाउ
2: ने गुड होगा वो निकल गई ना पीड़ ताड़ी पीड़ दी बोतल भर के देती थी
0: और एक और चीज चंगा हुआ कि देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड ब्रेव एंड यंग और यंग एंड ब्रेव जहां ये ब्लड कैंसर पेशेंट को जाता है। तो मेरे चर्च में एक लड़की है जॉर्जिया, ये उसके नाम पे गया।
2: गुड।
0: तो मैंने सोचा कि हम अपना एक रेडियो हांजी का भी ग्रुप बना सकते हैं कि वाहेगुरु ना करे किसी को कभी किसी ब्लड की जरूरत पड़े, वो खाली बोलेगा रिचर्ड आवी डोनर नंबर सच एंड सच का ब्लड इनको दे दो, प्रोवाइडेड द ग्रुप मैचेस एंड इट इज अ नोबल कॉज आल्सो, और रेडियो हांजी दी वाई वाई हो जाएगी।
2: जी बिल्कुल जी बिल्कुल
1: वाई वाई।
0: नहीं
2: संस्था जां होर वी कई भाईचारे चो संस्थावां कर रहियां ने ते अलग अलग बनाउण दे नालों जे उहनां दे नाल ही योगदान दे दित्ता जावे जिहड़े जिहड़े वी अपना ये चंगे काम च योगदान पाउणा चाहुंदे ने उहनां दे अग्गे बेनती है कि जदों वी किते समा लगे तो जरूर डोनेट करया करो।
0: एक निकी चीज नहीं है, जान बचा सकते हैं। तो जैसे जॉर्जिया को हर रोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है एंड हमारे ब्लड में से तीन किस्म के निकलते हैं, प्लाज्मा विच इज 60%, देन रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सो ऑल दोस थ्री कैन गो टू थ्री डिफरेंट इंडिविजुअल। तो बस थैंक यू रिचर्ड, आज का वीकेंड वीक था, मजे आ गए।
2: वेरी नाइस, थैंक यू, चंगा चंगा कर दे रहो।
0: सबको हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड।
2: थैंक यू जी, थैंक यू। चढ़दी कला दे विच रहो, तंदुरुस्त रहो ते चंगा चंगा कर दे रहो। थैंक यू। ते अमृत बहन जी कहते हैं कि सच बताओ तबीयत खराब होती ही क्या तुम्हें भी सबसे पहले माँ की याद आती है? सच बताओ तबीयत खराब होते ही तुम्हें भी सबसे पहले माँ की याद आती है? अजीब है ना, दिन भर हम खुद को कितना मजबूत दिखाते हैं पर एक बुखार सारी सच्चाई सामने ला देता है। दवा हाथों में होती है पर दिल में सुकून नहीं मिलता। जब तक कोई माथे पर हाथ रखकर ये ना कह दे कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, और सच कहूँ वो मैं हूँ ना, दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान कह सकता है माँ, वो है माँ। हम बड़े हो गए हैं पर दिल आज भी वही है जो दर्द में सबसे पहले माँ को ही ढूंढता है। थैंक यू जी, श्रद्धा भारद्वाज जी, श्रेया भारद्वाज जी की यह लिखत तो अमृत भैन जी ने साढ़े नाल सांझी कीती सी, धन्नवाद जी तुहाडा। ते बलजीत जी कहिंदे ने कि सत श्रीकाल, सोहणी गलबात जी, जिउंदे वास्ते रहो, सारिआं दा वीकेंड वधिया वधिया लंघे। सिमरन जी कहिंदे कि पता लगे भी अगों शुकर भा मैं आप कबड्डी दे टूर्नामेंट ते कहिंदे पिया चक्की फिरदा कविता आप नहीं जरूर हो गए कोई भी चक्के गल ते सुणाउण दी आ। ते थैंक यू मैंडी जी, धन्नवाद तुहाडा। कहिंदे सत श्रीकाल, ते कहिंदे हैव अ गुड वीकेंड टू ऑल फैमिली। ते वीर जी, कैन यू प्लीज़ अनाउंस इफ एनी वन कैन टैल मी रिव्यू फॉर वेरबी सेकेंडरी कॉलेज जां फिर त्रुगनीना वैमेन सेकेंडरी कॉलेज सीनियर कैंपस। माई डॉटर नीड टू हैव एडमिशन, रियली एप्रीशिएट, थैंक यू। हाँ जी, जो कोई आया तो मैसेज तो तुम आप जरूर दस देंगे जी। बाकी बेस्ट वे यो ही होंगे कि तुम उ जाके तो छुट्टी के टाइम खड़ो जो पाके भी कई बार गल कर चुके हैं, तो उस लिहाज के नाल वेखो भी उत्थे बच्चों का बिहेवियर किदा का, एक दूसरे ना कि विचरदे ते अपने जदों गड्डियां च बहिंदे आ माँ प्यो दे नाल ते उहनां दे नाल किद्दां पेश हुंदे आ। कुल मिला के बच्चियां दे चेहरे, उहनां दा तैयार होना, उहनां दे वालां दे स्टाइल तुहानूं

कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग, सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।
4: ऑर्बिट होम्स अपने इरादे वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनिआं दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नु 04332802 54

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
1: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेस विच समझाऊंगा किवें?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत ACMI ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡ ਸਕੁਐਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਫਤ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦ ਮੂਵਿੰਗ ਇਮੇਜ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਪੜਚਾਲ ਕਰੋ। 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਕਮ ਐਂਡ ਪਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋ ਐਪ ਪੜਚਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ, ਦੁਕਾਨ ਬਰਾਊਜ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਓ। ACMI.net.au ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4: ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਪਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
5: ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ
4: ਕੀ ਮਤਲਬ?
5: ਓ ਕਮਲੀਏ, ਸਨ ਕਰੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਵੱਧ ਗਈ।
4: ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਹੁਣੇ।
5: ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਬਚਤ ਤੇ ਲਗਵਾਓ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ। ਕਾਲ ਸਨ ਕਰੰਟ 0448-046-494 ਤੇ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਸਨ ਕਰੰਟ। ਦਿਓ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਓ $200 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ।
6: ਹਮਾਰੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਬਣ ਗਈ।
7: लेजेंडरी लव स्टोरीज की तो एंडिंग ट्रैजिक होती है।
8: फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, धर्मा प्रोडक्शंस प्रेजेंट्स चांद मेरा दिल। वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल, कमिंग टू सिनेमाज ऑन May 22nd।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आड़े नाल।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 90779733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

मौसम तेरे नखरे ने मुक दे सारे तेन कह नॉटी हॉटी पीछे नॉटी नॉटी ना अंग्रेजी ना देसी फिर भी ना जानू क्यों हुआ सेंटी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

एक बार जो तुद पावे साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाकसार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाख खाए।

ना पाए जाए ए अंत न जाने कोए, बहुता कही है बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्री मुख वाग पाद सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्ते अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अवेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अवेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सतबंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चंतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है

है न लंब है असंब है, अगम है अजम है अभूत है अझूत है, अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है, अजीत है अभीत है अबा है अगा है, अमान है निदान है अनेक है फिर एक है, प्रियांक प्रिया छंद।

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरध करदा अधो उर्ध अर्धंग अग उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियंपुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाते नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व दिसंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तर्मंग अलख कर्मंग सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तात्र दिशा विशा हो फैलो नराग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेधरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर महीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेख अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदा एकाम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

कालान काल अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछ्य कंस आदि श्री तरम सर्वां बरनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृश्य अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज भेषय के आगंज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्म तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सली खुदमदामे गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे तिरपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनास है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नर गनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंग भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के
हाजर हजूर है, मेशल सलाम है, समस्तल कलाम है, के साहिब दिमाग है, के उसन चराग है, के कामल करीम है, के राज करीम है, के रोजी दहंद है, के राज करहंद है, करीमुल कुमाल है, के हुसन जमाल है, गनीमुल खराज है, गरीबुल निवाज है, हरीफुल सकन है, हिरासल फकन है, कलंकम परनास है, सुमस्तल निवास है, अगंजल गनीम है, रजायक रहीम है, सुमस्तल जुबा है, के साहिब के राह है, के नरकम परनास है, बिस्तल निवास है, के सरबर गवन है, के हमेशा रवन है, तमाम तमीज है, समस्त अदीस है, परम परम ईस है, समस्त अदीस है, अदेसल अलेख है, अभेसल अभेख है, जमीन जुमा है, अमी कुमा है, करीमल कुमाल है, के जुर जमाल है, के अचलंग प्रकाश है, कृमित सुबास है, के अजब स्वरूप है।

गुण गण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुण गण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडर है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वंभर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वंभर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है भव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संगताम शंख शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए शराब समूह सिदान के देख फिरियो करजोग जति के सूर सुरार दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान जात बिचारे इते पै तो कांपे अंत को नांगे पाए बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है राज हजारे ओत पवेख पवान के पुवत कौन गने नी जात विचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनह दुर्ग

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाच दिशा में कहूं पुछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रच्छा राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन

जो थियो जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सेवगुन सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहा।

0: तिनका सबद सचै सवारिया, कह नानक ए आनंद है आनंद गुर ते जानिया।
1: बाबा जिस तू दे सोई जन पावे, पावे तो सो जन दे जिसनू हो।

0: अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुरु तेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन।

माया अगन सावी को जई करता खेल नचाया जांत सुभाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक

पावन भक्त वत्सल करुणा निदान जुग जुग अटल चवर शतर तख्त दे मालक गुर तख्त दीते विराजमान गरीब निवाज तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर विराजमान गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ वडभागी हो जो आप जी धन सोडी सुल्तान श्री गुरु रामदास महाराज जी दे महान बख्शिशमई अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी अते गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान अस्थान विखे हाजरियां भर रहे हो। अज दा पावन पवित्र श्री मुख वाक धन सोडी सुल्तान श्री गुरु रामदास महाराज जी दी मुबारक रसना तो उचारण कीता होया है। सतगुरु जी रहाउ दिया पंक्तियां दे विच फरमाउंदे हन कि हे मेरे मन ओ खंडा ब्रह्मंडा दे मालक अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे नाम दा भजन करिया कर। नाम जपन दे नाल लोक परलोक दे सुख तैनू प्राप्त होणगे। हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोबिंद का सदा लीजै। मिटे कमाणे पाप चिराणे साध संगत मिल मोआ जीजै। ए जो परमेश्वर दा नाम है किवें प्राप्त हुंदा है महाराज जी फरमाउंदे हन ए पूरे गुरु दे राहीं दी प्राप्ति हुंदी है। जद पूरा गुरु नाम दृढ़ करवा देंदा है फिर नाम रोम रोम दे विच वस जांदा स्वास ग्रास दे विच वस जांदा सारे पासे नाम ही नाम दिखाई देंदा नाम ही नाम सुनाई देंदा है। इस कीमती नाम तो बगैर मनुख दा जीवन व्यर्थ है बेमतलब दा है। महाराज जी दे बचन आपां पढ़दे हां दुध बिन तेन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही। जिवें दुध नहीं देंदी गऊ ओदी कोई बहुती महानता नहीं। जिदे पंछी दे खंभ ही नहीं हन ओ उड़ारी नहीं मार सकदा। जिथे जल दा प्रबंध नहीं पानी नहीं उथे खेती हरी भरी नहीं रह सकदी। क्या सुल्तान सलाम वी होना अंधी कोठी तेरा नाम नाही। ओ केड़ी गल दा सुल्तान है जिन्नू कोई बुलाउंदा तक नहीं है कोई आदर नहीं करदा। इसे प्रकार ए मनुख दा जीवन व्यर्थ है जिस जीवन दे विच परमेश्वर दा नाम नहीं। जिवें जिवें महाराज जी आपां नूं महान बख्शिश कर रहे हन आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ गुरमत विचार दे नाल जुड़दिया होया एक बारी सारी संगत प्यार

0: जिस अगै सब निवन
1: जेठ दे महीने द्वारा महाराज जी धन गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज पंचम गुरदेव समझाउंदे हन सिख्या देंदे हन कि उस खंडा ब्रह्मंडा दे मालक वाहिगुरु परमेश्वर दे चरणा दे नाल जुड़ना चाहिदा है जिस दे अगे सारे ही न्योंदे हन की देवियां की देवते पीर फकीर की दैत सारे ही ओहदे अगे झुकदे हन कोई ऐसा नहीं जिहड़ा परमेश्वर दे अगे झुकदा नहीं जिन्नियां प्रकृति दे विच शक्तियां हन सब ओहदे हुक्म दे अनुसार ही चल रही हन भै विच पवन वह सद वाओ भै विच चले लख दरियाओ भै विच अगन कढ़े वेगार भै विच धरती दबी भार सब ओहदे हुक्म दे विच ही हन इस करके आपां नूं

नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। शॉपिंग के समय बाय वन गेट वन फ्री वाली स्कीम का लाभ तो आपने उठाया होगा। एक वस्तु लेने जाओ, दूसरी उसके साथ फ्री फ्री फ्री। हमें जिस चीज की आवश्यकता ना भी हो तो भी हम खरीद ही लेते हैं उस फ्री के लालच में। मजे की बात, हम सब बचपन से ना जाने कितनी कहानियां सुन और पढ़ चुके हैं कि लालच बुरी बला है। वो लकड़हारे वाली कहानी तो याद है ना, जिसमें उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर जाती है। किंतु आज का हमारा विषय लालच नहीं, फ्री में मिलने वाली वस्तुएं हैं। किसके साथ क्या फ्री मिलती है सब जानते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

सुन रहे हैं आप पुण्य दर्शन अपने दास के साथ। तो आपको भी जानना है ना क्या क्या फ्री मिलता है इस भौतिक जगत में हम इंसानों को। आज के मॉडर्न लाइफ में यही हो रहा है। थोड़ा पैसा आया, ईगो फ्री। थोड़ी पॉपुलैरिटी आई, एटीट्यूड फ्री। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़े तो इंसान खुद को भगवान से कम नहीं समझता। दुनिया में इंसान के पास नॉलेज बहुत है, पैसा बहुत है, अचीवमेंट्स भी बहुत है, किंतु फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं, मन अशांत है और अंदर कहीं ना कहीं अकेलापन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इंसान के अंदर एक चीज बहुत तेजी से ग्रो करती है और वो है अहंकार, ईगो। एक आदमी पढ़ा लिखा, सूट बूट में गांव गया, किसी कंपनी का बड़ा इंजीनियर था, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आया। गांव जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती थी। वो नदी किनारे पर पहुंचा और नाव पर बैठ गया। अब महंगे कपड़े, हाथ में एक्सपेंसिव घड़ी, बड़े बड़े सूटकेस और बातों में इतना घमंड कि जैसे पूरी दुनिया उसी से चल रही हो। नाव में बैठे गरीब नाविक से पूछा, भाई इस गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? तुम कितना पढ़े लिखे हो? नाविक बोला, साहब मैं तो अनपढ़ हूं। वो देखकर हंसकर बोला, पुअर मैन, तुम्हारा तो 50% जीवन बेकार है। फिर वो बोला, तुम्हारे गांव में नदी पार करने के लिए पुल या फ्लाईओवर नहीं है? नाविक बोला, नहीं, तुम्हारा जीवन 60% बर्बाद है। कितना गरीब गांव है तुम्हारा, सिर्फ 5 रुपए नदी पार करवाने के लिए लेते हो। मेरा पुल बन जाने से क्या तुम्हें पता है क्या होगा? नाविक बोला, नहीं साहब। वो बाबू बोला, फिर तो तुम्हारा 80% जीवन बेकार है। अचानक मौसम खराब हुआ, तेज हवा चलने लगी, नाव भी हिलने लगी। वो अमीर आदमी डरने लगा। तब नाविक ने उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा कि उसकी हवाइयां उड़ गई। क्या था वो प्रश्न बताता हूं, बड़ा मजेदार है। मैं यूं गया यूं आया।

0: इंश्योरेंस ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

गया और उसका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड सब गायब हो गया मानो। वो घबरा कर नाव वाले से बोला, भाई नाव संभालो। नाव वाला बोला, साहब आपको तैरना तो आता है ना? बाबूजी बोले, नहीं। नाव वाला बोला, फिर तो साहब आपका 100% जीवन बेकार है। वो बोला, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। ऐसा करो, मेरा सामान सूटकेस सब नदी में गिरा दो, नाव डूबने से बच जाएगी। तब नाव वाले ने बहुत ही शांत होकर एक बात कही, साहब यहां नदी में वजन सामान का नहीं, अहंकार का डूबता है। पूरी जिंदगी का सत्य है, अहंकार इंसान को ब्लाइंड बना देता है। उसे लगता है मैं सबसे बेहतर हूं, मुझे सब पता है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है। अर्जुन को भी तो भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, दंभ, घमंड, अहंकार, क्रोध, कठोर वाणी और अज्ञान, ये सब आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के लक्षण हैं। तो इस पर कीजिए विचार और इनसे बचिए। नॉलेज रखिए, सक्सेस पाइए, मेहनत कीजिए, किंतु अपने भीतर अहंकार मत आने दीजिए, क्योंकि रिश्ते टैलेंट से नहीं, आपकी नेचर से चलते हैं। इस पर कीजिए विचार और मुझे दीजिए आज के लिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो बड़ी बड़ी हांकते हुए वो शहरी बाबू, जिसकी हवा टाइट होने लगी थी, जब तेज हवा चलने लगी और छोटी सी नाव जोर जोर से हिलने लगी, अब वही आदमी डर

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हां जी हां जी,

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

दूर होए, मैं आज भी ओ तो कोहां दूर खड़ा, नी तेरे बाट दा तुआया सी, बाट उतार दा तुआया सी, नी तेरे बाट दा तुआया सी।

0: लोकल्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू
1: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा,
0: मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: पांडे जी क्या तू साला लक पाए हो यार, एक दोस्त के साथ पकड़े गए और दूसरी दोस्त छुड़ाने चली है और ये तीसरी दोस्त ही है ना।
3: देखिए प्रजापति पांडे, उनकी श्रीमती एंड अदर्स, इन पति पत्नी और वो दो, 15 मई से आपके नजदीकी थिएटर्स में।